0: 마음은 믿어요. 그러니 의미하는 거예요.
1: 아니 यहाँ तल लडेर बसिरहेर त मैले उठाएर ल्याएको
0: छैन
1: अनि म लगिदिइहाल्छु नि
0: म त फ्री भएर गएँ होली भनेर यहाँ रिसा

चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज, चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज, चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ज। संगम मेडियल्स क्लिनिक गोर्खामा आधुनिक उपकरण र अनुभवी स्वास्थ्यकर्मी मार्फत विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण सेवा।
1: क्लिनिकमा उपलब्ध सेवाहरू मुटु तथा रक्तचाप जाँच, सम्पूर्ण रक्त परीक्षण, सुगर परीक्षण, लिभर तथा किडनी कार्य सम्बन्धी परीक्षण, थायराइड, कोलेस्ट्रोल, युरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल, युरिन तथा

0: त छैन यार।
1: शहर में भीड़ छ मान्छे अकेला, टेन्सन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो बात मा ठुलो समेला।